0: वैसे दिलेश जी के लिए आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट।
1: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिशा जी कैसे हैं? वेल वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल, एंड गाइस आज आप लोगों के साथ हम एक नया आवाज सुनने जा रहे हैं और ये पहली बार है। वेल शी हैज बीन इन आवर स्टूडियोज फ्यू टाइम्स, पर आज पहली बार हमारे साथ शी इज जॉइनिंग अस इज अ टीम पार्ट ऑफ द टीम ऑफ रेडियो केजे एंड शी इज आवर न्यूएस्ट आरजे। आरजे दिशा जी चले आपकी आवाज में, आई कीप कॉलिंग यू आरजे जीपी जी। आरजे दिशा जी चले आपकी आवाज में हम सुनते हैं जो जो लोग हमारे साथ सुन रहे हैं, एंड यू कैन ग्रीट क्योंकि आप अभी फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो।
0: हेलो हेलो क्राइस्टचर्च, केम छो, हूँ छो दिशा पटेल और मैं हूँ आपकी साथी आरजे दिशा। हस्ती गाती झूमती नाचती मैं हूँ आरजे दिशा और मैं आज लेके आने वाली हूँ अब सबके लिए बहुत ही धमाकेदार एक्साइटिंग न्यूज और एक्साइटिंग सॉन्ग्स, जस्ट लाइक म्यूजिक बच्चे का लाउड तो राधा नाचेगी। आज तो सारी राधा नाचेगी झूमेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और कृष्णा के साथ जब आ जाते हैं तो राधा बिल्कुल ही नाच लेते हैं। ओके सो आरी जी, अभी हम जब मोगेजेस की फिल्म में बात करते हैं, अभी हमने रिसेंटली आपका कोई वीडियो नहीं देखा इसीलिए हमने बोला कि आरी जी कहाँ घूमोगे, पर मोगेज की फिल्म में क्या हो रहा है? समथिंग चेंज इन लास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जब यू नो न्यू गवर्नमेंट आ रहा है, सी ये कुछ कुछ कुछ कुछ तो बदलाव आएगा ना मोगेज की फिल्म में?
2: डेफिनेटली देखिए, अभी नेशनल ने भी बोला है कि अगर वो पावर में आते हैं दे विल इंक्रीज द कायंगी और थ्रेश होल्ड, जो इनकम थ्रेश होल्ड था ना फॉर अ हाउस होल्ड, अभी वो 150,000 है, दे विल इंक्रीज इट टू 300,000। तो उसकी वजह से बहुत ही लोग होंगे जो 5% डिपॉजिट के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी।
1: oh, wow.
2: वैसे भी ओवरऑल देखा जाए कि अगर आप रॉलस्टन या आप वेस्ट मेल्टन की तरफ देखें तो देयर आर सो मेनी न्यू बिल्ड्स कमिंग अप, तो काफ़ी फर्स्ट होम बायर्स अभी खुद का घर बिल्ड करना चाहते हैं और इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, यू नो 676-683 बेड टू बाथ।
1: ओह वाओ, ड्रॉप प्राइस ड्रॉप हुआ है ना?
2: ड्रॉप भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक।
1: अच्छा हाँ।
2: और बिल्डर्स के पास अभी इतना ज्यादा उधर स्टॉक है सो दे आर ऑफरिंग दैट प्राइस। बाकी अगर आप थोड़ा स्पेक हाई करना चाहते हो घर का, देन ऑब्वियसली यू लुक एट अबाउट 750-760, बट देयर इज सो मेनी गुड ऑप्शंस आउट देयर।
1: क्या बात है क्या बात है। और शिवम जी, वैसे तो हम नॉर्मली कहते थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ एनजेड इंश्योरेंस के शिवम जी है, शिवम अरोरा राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब हम बोल सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ अवार्ड विन

0: king. Shivamji, you recently won some awards. What was that?
1: I think that's the reason I went to Fiji.
0: Achha.
1: So our conference is in Fiji. So there is a group of insurance advisors we work with nationwide. So there, like I was surprised as well. I think I would love to thank you all the people actually watching me, who somehow I helped them keeping their insurance policy or protecting their family. So unki wajah se I got just got insurance advisor of the year, and the couple of other awards we have done. So again, this is just a
0: hard work pays off,
1: kind of, but this is something we don't look always, but at the same time it motivates us. The main reason we are here, or we are working, just to help especially our community so that their family live in a peace of mind with the protection plan in place.
0: Kya baat hai. Aur Ari ji, how's Nathan doing? He's good.
2: Nathan is pretty good.
0: Yeah,
2: Auckland. I think wo bhi ek aadhe month mein move ho rahe hai there, so looking forward to it.
0: That's nice. Aur Ari ji, jab hum mortgage ke bare mein baat karte hain regarding, वैसे Disha, well, hum aapse bhi janna chahenge ki as somebody who is like, you know, in the field there and you recently graduated, what will be your advice? Aapka advice kya hoga jo log soch rahe hain baith kar abhi bhi double minded about ghar lene ke liye? Aapka advice kya hoga jo aap recently, congratulations, you also got graduated, so okay, what would you say to them?
3: Thank you. Mera ek hi advice hai ki just do what your heart says, and it's never too late. Kisi bhi cheez ke liye kabhi koi late nahi hota. And if we have such amazing people hamare saath, jo itna processes ko easy banate hai, so we should definitely try. Or definitely try, and ye log to hai hi hamare saath jo process ko easy banate hai hamare liye, and that would make us life so very easy. तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरा भी टर्न आएगा, मेरा भी चांस आएगा, तो आई डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू गाइज. तो आप भी जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपका अगर ड्रीम है टू बिल्ड योर हाउस इन अ न्यू कंट्री, प्लीज गो फॉरवर्ड विद दैट.
0: Well said. कोई रोहित पटेल है आपको छेड़ रहा है?
3: अच्छा.
0: इनके हस्बैंड है. चले हमारे साथ कुछ लोग और याद कर लेते जल्द से जल्द. और जी हाँ, जैसे हमने कहा कि विदाउट देयर सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं होगा. तो हमारे साथ वी हैव गॉट री इमिग्रेशन, और री इमिग्रेशन के साथ साथ दिशा जी, वी हैव ऑल्सो गॉट टच एंड ग्लो. टच एंड ग्लो के बारे में व्हाट डू यू थिंक क्यों जरूरी होता है टच एंड ग्लो?
3: अभी खूबसूरती का निखार किस किस को नहीं बताया?
0: क्या बात है,
3: खूबसूरती के निखार के लिए
0: खूबसूरत लोगों को मैं, आप बोलते रहो, मैं खूबसूरत लोगों को दिखा दूं इधर.
3: एंड टू गेट द शाइन, आप देख रहे हैं इनके मुंह पे कितना शाइन है अभी. जस्ट टू फॉलो दैट शाइन, गो टच एंड ग्लो. एंड वी ऑल्सो हैव
0: MCKEA NZ न्यूजीलैंड. और याद रखिए, अगर आपके घर पे भी कोई है जिनको किए की जरूरत है, तो MCKEA NZ. एंड ऑफकोर्स नेथन मिगलानी और आरी वेंस फ्रॉम स्क्वायरल साउथ आइलैंड. शिवम जी, जब आपने कहा है कि ऑफकोर्स योर हार्ड वर्क पेड ऑफ और इंश्योरेंस के उसमें, एंड अभी रिसेंटली आई थिंक आई कांट रिमेंबर हुम आई वाज टॉकिंग टू और रिगार्डिंग अ बिग बिल हेल्थ इंश्योरेंस का आया, एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ दोस सेम मिस्टेक जो बार बार लोग करते हैं कि चलो कोई नहीं यार ठीक है, क्यों इंश्योरेंस ना, क्यों वीकली $5 कटाना है. बट जब बिल आया वो लेटर सडन, क्योंकि अभी हम इस वी आर इन दिस डे एंड टाइम जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. तो अगेन यार, आप एक बार फिर लोगों को रिमाइंड कराइए कि क्यों जरूरी होता है इंश्योरेंस लेना.
1: अगेन मैं पहले भी मैंने ये बात कही है कि वी आर लकी इनफ टू हैव अ रियली गुड सिस्टम इन न्यूजीलैंड, स्पेशली विद द हेल्थ के हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है. एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम है कि इट इज रियली बिजी, है ना. वी हैव टू बी इन अ क्यू टू गेट इवन वन टेस्ट डन, सम टाइम इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स. लेकिन हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस टू जस्ट पे अ लिटल अमाउंट एवरी मंथ और वीक और वट एवर यू वॉन्ट टू, उसके साथ क्या होता है कि वो जो रिस्क होता है 2 महीने की वेट का, और जो कोई डिजीज हो जाती है उसको ट्रीट करने का टाइम है ना, वो स्किप कर सकते हो आप. So you got treatment available straight away.
0: जी.
1: तो कहीं ना कहीं हमको ये आज सोचना पड़ेगा, because it is always good to have a health insurance when you are young and healthy. Because जितना time आप उसको देर में डालोगे अपने पे, you will grow. There will be a lot of medical conditions. जैसे जैसे age बढ़ती है, a lot of medical condition आ जाती है. तो फिर then the health insurance will not cover. So it's good to have it. Just have a chat with us. We will plan something which can take you to secure your future health.
0: क्या बात है, क्या बात है. और अरिजी

0: हम अभी रिसेंटली देख रहे थे कि यहाँ क्राइस्टचर्च में, जैसे आपने कहा कि काफ़ी धूम मची हुई है घर लेने के लिए, और बहुत सारे लोग इधर मूव हो रहे हैं. तो स्क्विरल साउथ आइलैंड, ये सिर्फ क्योंकि हमारे साथ लिसनर्स द जॉइन अस ऑल द वे फ्रॉम गो इन वकागिल, तो स्क्विरल साउथ आइलैंड कवर्स ऑल ऑफ साउथ आइलैंड, राइट?
1: यस, सारा साउथ आइलैंड हम ही कवर करते हैं. वैसे हमारे ऑफिसेस वेलिंगटन और ऑकलैंड में भी है, बट होल ऑफ द साउथ आइलैंड वी कवर फ्रॉम क्राइस्टचर्च.
0: क्या बात है. और आपको अपने काम के लिए क्राइस्टचर्च से बाहर जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो?
1: जा सकते हैं. कहीं सेमिनार करना है, कि अगर कोई किसी अर्जेंट क्लाइंट को मिलना है, या हमें किसी बिल्डर्स या डेवलपर्स को मिलना है, सो ऑफन वी ट्रेवल टू यू नो डनीडन या क्वींसटाउन हो गया, ऐसे जाते रहते हैं.
0: अरे सिंस आई एम टॉकिंग टू यू, आप लोगों ने आई थिंक पिछले 2-3 बार बहुत ही सक्सेसफुल फेस्ट होम बायर्स का सेमिनार किया था. कुछ प्लान है, एनी प्लान्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर?
1: हाँ, अभी हम एक इन्वेस्टमेंट सेमिनार कर रहे हैं जैसे फॉर बिल्डर्स, क्योंकि हमारे खुद के नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि मार्केट ब्रेकिंग है, क्योंकि उसको मार्केट में कोई और लैंडर कम्पीट नहीं कर सकता, स्पेशली जो स्मॉल स्केल बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं उनके लिए. बाकी कुछ ना कुछ हम डेफिनेटली आगे भी प्लान करते ही रहेंगे.
0: ओह नाइस. अच्छा, फिर अगेन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते रहते तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन देख रहा है ना, जिसको जरूरी पड़ जाए. जब आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स और लेंडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए, ये इन्वेस्टर्स जरूरी नहीं है कि कोई टॉप नॉच बिजनेसमैन ही होना चाहिए. ये इन्वेस्टर्स एवरीडे पर्सन हो सकता है, शायद जिन्होंने एक प्लॉट लेकर रखा है और उस पर उनको कुछ और बनाना है अपार्ट फ्रॉम वन हाउस.
1: डेफिनेटली.
0: हाँ, अच्छा, ये वन हाउस का सिर्फ की इज इट अ रूल कि आपने अगर एक प्लॉट लिया है विच जहाँ पर आप एक टाउन हाउस, 5 टाउन हाउस बना सकते हो या एक घर, तो ऐसा कुछ रूल है कि आप सिर्फ एक घर भी बना सकते हो या टाउन हाउस भी बना सकते हो 5?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप गवर्नमेंट काउंसिल से अप्रूवल लेकर आते हो, रिसोर्स कंसेंट का, कि जो भी उधर डेवलपमेंट का अप्रूवल है, यू कैन बिल्ड 1 house, 2 house, 5 houses, जो भी आपको काउंसिल अलाउ करता है उधर.
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और अरी जी, जब हम घरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, घर लेना तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, पर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने अभी रिसेंटली लाइक आई सेड कि हम जब देखते हैं और हम जब लोगों से बात करते हैं, तो इंश्योरेंस कभी के क्या हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस एक वो हमारा एक माइंडसेट होता है ना, कि इंश्योरेंस ना 30 या 50 लोग उम्र के लोगों को इंश्योरेंस लेंगे, बच्चों के बारे में हम भूल जाते हैं. कभी कभी बच्चों के लिए लेना इंश्योरेंस भी ज़रूरी है.
2: ये दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माई कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट्स ना, कि जो भी स्पेशली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो मम एंड डैड्स हो, जो बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी है ना, वो होते हैं, तो आई ऑलवेज ऑलवेज इंक्लूड द चाइल्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस.
0: यू सजेस्ट दैट?
2: 100% बिकॉज वो अभी 5, 10 साल, 12 साल के हैं, ठीक है, they have to go out and they have to live the life, they normally play sports.
0: Sports ka yaar bahut sare injuries
2: hain. Agar wo abhi se health insurance le lenge, then their whole life they will be really happy, because unke paas treatment ke liye koi queue mein nahi rukna padega. They can go straight away to get their private health consultations or treatments or diagnosis, anything, and it is really cheap. Especially for kids ke liye, health insurance is not even similar to maybe a cup of a coffee.
0: अच्छा, अगर शायद, sorry to interrupt you, शायद अभी कोई parents सुन रहे हैं जिनके मान लो बच्चे 8 से लेके at least 15-16 तक है, जो स्पोर्ट्स में, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में, चाहे रग्बी हुआ शायद, तो इफ यू कैन प्लीज एलोबरेट ऑन दैट, कि शायद उनके बच्चे के पास इंश्योरेंस नहीं और आज ये सुन के दे माइट एक्चुअली कम फॉर इट.
2: यस, सो आई जस्ट शेयर अ लिटिल बिट एग्जांपल ओवर देयर. आई जस्ट हैड अ फ्यू मंथ्स बैक वी हैड अ क्लेम, 13 years old यंग गर्ल हैव अ टॉन्सिल्स. दैट्स अ एज नॉर्मली व्हेन यू डेवलप, राइट?
0: हां जी.
2: सो फॉर public health sector, the tonsils normally they just give a paracetamol or just a normal medication, and there's a long wait, probably around 8 weeks to get it treated. But luckily they had an insurance.
0: Oh, and you can go private.
2: So you know how, so they have done the surgery within 3 days. It cost the privately cost probably around $5,000 to $6,000, but because of insurance it was all covered. And the parents were so happy, they don't have to give their daughter every night painkillers,
0: tablet kuch na,
2: otherwise they have to give it for like 2 months until the surgery was done in public sector. So this is just a little example.
0: Luckily insurance tha na.
2: Yes, the same thing applies for, because bacche jab bade hote hain 10-12 saal ke baad, their body

0: यू नो डेवलप होती है तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी छोटी मोटी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है इफ इट्स नॉट गेट ट्रीटेड एज क्विकली एज यू कैन दैट कैन बिकम अ रियली बिग थिंग गोइंग इन द फ्यूचर ना सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर छोड़ दे क्योंकि दे आर रियली बिजी they can't just see every single day that many people
1: yeah, haan ji.
0: So yahi hai ki same applies to the those kids who play some sort of a games you know there are covers or at least unki injuries cover ho jati hai they can get treated straight away aisa hai
1: so oh, wow yeah. wow see there you go guys abhi naya kuch pata chala aur disha ji GPG keh rahi hai welcome to the team aapse I think kafi log Dhaval Dave ji hai Rika ji you also want to welcome our newest member aur iske sath sath hamare sath Jaya Patel ji I think aap bhi might be
2: sasu mom hai
1: acha sabhi aaj sabhi aa rahe hain so disha you can quickly just hamare do sponsors ke bolne ke baad if you can greet our listeners and then we'll go to both our members for the final question for tonight.
2: Sure. Thank you. So, aap agar ghar lene ki soch rahe hai, to hamare paas hai direct contacts. Please do come and contact any of us and we would straight away take you to them. Also, aapko insurance lena ho, to hamare paas contacts hai. Aur insurance क्यों नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं और वही इवेंट को डेकोरेट करते हैं फैनफेयर इवेंट्स दे डू बुकिंग्स अक्रॉस बर्थडेज बेबी शावर्स कल्चरल इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट सेटअप्स दे आर रिलायबल फॉर वेडिंग big events like coming up and they'll take care of everything or we have PP production maine unki photography dekhi hai kafi acche se wo capture karte hain so PP production thank you for capturing me and he'll capture you well as well so
1: abhi recently I think inhone aapka video kuch kiya hai na
2: ha isiliye maine unki tarikh
1: okay chale hamare jaise humne kaha ki aaj hamare paas kuch aur bhi guest aa rahe hain to Ari ji sabse pehle thank you so much yaar aap log you know aa jaate ho aur information jaise aaj I absolutely loved ye jo information आए ऑनेस्टली डिड नॉट मुझे कभी क्लिक ही नहीं हुआ कि अगर जैसे लोग फर्स्ट होम बायर्स के लिए जाते हैं व्हाट अबाउट जिनके पास जो घर है दे कैन कम टू अ इन्वेस्टर्स सेमिनार जहां पर वो उनको पता चल सकता है जहां पर आप शायद एक घर बनाने का सोच रहे थे वहां पर आप 5 टाउन हाउस कर सकते हो तो Ari ji फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू एंड देन वी विल गो टू शिवम जी
3: देखिए मॉर्गेज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर वो घर लेना चाहता है ना अगर उनको लगता है कि वो 6-8 महीने में लेना चाहते हैं इट्स गुड कि अगर आप अभी बात कीजिए शायद आप अभी रेडी हों रादर देन वेटिंग टू लॉन्ग और यार आपके पास एग्जिस्टिंग घर है एग्जिस्टिंग मोर्गेज है उसका रीफिक्स ड्यू है तो आप हमसे बात कर सकते हैं वी कैन रिव्यू की रीफाइनेंस में या आपको बेटर इंटरेस्टेड मिल जाए या कैशबैक आ जाए सो देयर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस या आप यू नो कोई डेवलपर है वो एक या दो घर बनाना चाहता है और कोई बड़ी डेवलपमेंट करना चाहता है सो वी कैन सर्टेनली हेल्प आउट विद दैट
1: Thank you so much. और Ari ji, आज आपने जो information दिया हम इतनी बार आपसे बात कर चुके हैं regarding a lot of insurance पर I think आज यही क्लिक हुआ कि बच्चों का insurance लेना कितना ज़रूरी होता है Maybe next time जब आप आएंगे we'll do more into that, you know, और depth में जा सकते हैं कि किस एज के कहाँ जैसे आपने कहा कि tonsil जो लड़की you know बेटी काफ़ी दिनों से she was going pain through the pain पर you know your insurance होने के कारण process fast था तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद and congratulations once again. Award winning Shivam ji chale a few words from you before we sign off
0: jaise main hamesha ek baat yahi kehta hu ki we normally don't talk about death we don't normally talk about these medical illnesses at our place hum wo khane ke table mein ye baatein ghar mein bilkul bhi nahi karte as an advisor ye meri job hai ki उन बातों को बहुत कंफर्टेबली आपके साथ बैठ के मैं डिस्कस करूं कि कोई भी आपकी जो प्रायोरिटी जो नीड्स है आपकी उस तरह से आपका एक प्रोटेक्शन प्लान बना सकूं सो डोंट स्केयर फ्रॉम इंश्योरेंस जस्ट कम एंड सी अस वी विल मेक यू कंफर्टेबल एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस वी विल हेल्प यू टू सिक्योर अ राइट प्रोटेक्शन प्लान फॉर यू
1: Thank you both of you and aapko hum milenge bahut hi jald and you also take care thank you so much. That was Ari Bains and Shivam Arora from Coral South Island and NZ इंश्योरेंस ओके गाइस जैसे हमने कहा कि दिशा जी रोहित जी का एक मैसेज आया कि आते रिबेगस से या कहीं से भेगा लेकर आना आप उनको कुछ बोलना चाहोगे रिप्लाई करना चाहोगे उन्हीं के अंदाज में
2: मैं आज घर नहीं आने वाली
1: देखो रोहित जी घर नहीं आएंगे और आई थिंक ये जो लाफिंग इमोजी भेजा है ना अगर मैं गलत नहीं हूँ ये शायद जीबी ने ही भेजा होगा
2: ये पार्टनरशिप काफी
1: पार्टनरशिप हाँ इनका इनका इनके बारे में कुछ करना पड़ेगा

0: इनका क्या है या तेरा तो क्या
1: बनते
0: तो क्या क्या तेरा क्या क्या तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा और रोशनी पटेल जी अभी हमारे साथ है, शीतल पटेल जी, काफी सारे दिशा के आने से आज हमारे जो पटेल क्या व्हाट डू कॉल दैट गुजराती में कैसे कहते हैं कि आप पटेल हो और डू यू से दैट स्पॉट पर आपको हमने भी रिसेंटली कहा था कि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग दिल तो है दिल दिल का एतबार क्या कीजिए, अगर आप अपनी सुरीली आवाज में जहां तक आपको याद है अगर दो लाइन हमें सुना दे इससे पहले हम जो दूसरा गेस्ट को अंदर स्टूडियोज में लेकर आए. So ladies and gentlemen, जब हमारे साथ आप शामिल हो जाते हैं, of course, Radio KJ is जहां पर हम नए टैलेंट को लेकर आते हैं. दिशा को पहली बार हमने स्टेज पे देखा था और एज अ सिंगर देखा था, सिंगर से फिर हमारी दोस्त बनी, दोस्त से हमारी फैमिली बनी, एंड देन शी बिकेम अ पार्ट ऑफ रामायण एंड टुडे शी हैज बिकम अ एक्चुअल पार्ट ऑफ रेडियो KJ का एज वन ऑफ द RJ. So ladies and gentlemen, I present to you the sensational singing sensational RJ दिशा.
1: थैंक यू सो मच क्रिश जी. और बिफोर स्टार्टिंग मैं मुझे कब की ये बोला था बट आई फॉरगॉट टू से इट. सो मैं हूँ आपकी साथी, हंसती गाती झूमती नाचती आरजे दिशा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. और जैसे कि क्रिश जी ने कहा, दिल तो है दिल, ये वाला गाना मेरी मम्मी का भी एक्चुअली बहुत फेवरेट है.
0: रुपल जी और हमारी बहुत बनने वाली है,
1: बहुत बनने वाली है, क्योंकि वो जब भी ये सॉन्ग गाती है तो एक्चुअली मैंने जो भी मैं लाइन अभी गाऊंगी वो मैंने उनसे ही सीखा है. सो आई विल जस्ट रिसाइट अ फ्यू लाइंस.
0: जी बिल्कुल.

0: well done. Thank you. Disha ji, chale, hamare jo agle guest hai, unko andar lekar aate hai. So guys, yes, that was Disha Patel for you. Ghar nahi aane, woh phool bech kar paida. Ji haan, aur RJ JPG, how are you? I'm missing you, RJ JPG. Gujarat ke mithas aur kehla kethi ke andaz. Aaj hamare saath, aap studios mein nahi hai, aap kuch busy hai, aur jabki Ramayan ka kaam chal raha hai, to aap definitely bahut busy hai. और जब भी रेडियो KJ का साथ हो जाता है, आप आपके जैसा टैलेंट तो शायद ही हमारे पास होगा यहाँ पर क्राइस्टचर्च में. द मोस्ट टैलेंटेड आर जे जी बी जी, सो आई मिसिंग यू अ लॉट. और रूपल जी का मैसेज आया है, लव यू बेटा. और उदय अंकल कह रहे हैं, मम्मी इज क्राइंग. तो माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, और जब बेटी इतनी अच्छी गाती हो, इतनी सुरीली आवाज़ हो, तो सिर्फ रूपल जी की आँखों में नहीं, पर किसी भी माँ की आँखों में ये आवाज़ सुनकर ज़रूर थोड़ी सी जो आंसू ये निकल ही जाएगी. You want to say something to Mama before we go to our next guest? Mama is crying.
1: थोड़ी देर में कॉल करती हूँ.
0: अच्छा, हाँ, थोड़ी देर में कॉल कर फिर दोनों साथ में क्राई करेंगे. चलो, ओके गाइस, जबकि हमने आपसे हमेशा कहते हैं कि रेडियो KJ इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग हमारे, स्पेशली हमारे कम्युनिटी में क्या हो रहा है. वी लव दैट कि हमारे कम्युनिटी में इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं. दे आर वर्किंग डे एंड नाइट. और क्यों? आप लोगों के लिए, टू ब्रिंग थिंग्स फॉर पीपल इन क्राइस्टचर्च. दीज आर एवरीडे पीपल जो अपने रोजमर्रा के जिंदगी से निकल कर मेहनत कर क्राइस्टचर्च में कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि कुछ अलग हो जाए. और आज वही अलग हम सुनने जा रहे हैं. वी हैव गॉट आवर नेक्स्ट गेस्ट इन द हाउस एंड इट्स नन अदर देन नीचे. क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक सेकेंड, लगता है आज मेरा फोन प्ले अप कर रहा है. देयर वी गो.
2: नमस्कार एवरीवन, मैं नेहा शर्मा, एंड हम यहाँ पे लेके आए हैं विहंगम योग का मेडिटेशन इवेंट, जो कि होने जा रहा है 26 सितंबर को एट टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर. इट्स मोर अबाउट द मेडिटेशन, यू नो, इन द मटेरियल लाइफ वी आर स्टक समवेयर. इट्स जस्ट द मेडिटेशन विच गिव यू द पाथ वेयर वी कैन फॉलो. एंड ही इज माय डैड.
0: रमाकांत
2: शर्मा.
0: हेलो जी अंकल जी, कैसे हो आप?
3: फाइन, थैंक यू. बहुत बढ़िया.
0: हाँ, अच्छा, ये जो आप यू नो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है क्राइस्टचर्च में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, सो कैन यू एलिब्रेट मोर कि जो लोग को नहीं पता है व्हाट एग्जैक्टली क्या

0: एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब लोग आएंगे?
1: जी, विहंगम योग का मतलब है, विहंगम का अर्थ है पक्षी. तो हमारी जो एंशियंट मेडिटेशन है वो इस विहंगम योग में सिखाई जाती है. और विहंगम योग रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, जो कि स्वर्वेद महामंदिर है बनारस में. और उस मेडिटेशन सेंटर की ये खासियत है कि उसमें सभी वेदों की, आप जब जाएंगे एंटर करेंगे तो सारे उसके वॉल्स पे वेदों के ग्रंथ पूरा लिखा हुआ है, उपनिषदों का ज्ञान उसमें लिखा हुआ है. तो इसका जो हिस्ट्री है वो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो कि हिमालय योगी हैं, जिन्होंने 17 ईयर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल मेडिटेशन एट हिमालय उसे रियलाइज़ करके 5 लेवल ऑफ मेडिटेशन बताया. इस प्रोग्राम में फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन सिखाया जाएगा. और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में जो सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं वो आ रहे हैं यहाँ क्राइस्ट चर्च में.
0: जी, पहली बार आ रहे हैं क्राइस्ट चर्च में. हाँ, शीतल, राइट? नेहा जी, आप अगर इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, जैसे किसी का जब एक फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो ज़्यादा करके या तो थ्रू पेरेंट्स होता है, थ्रू रूट्स होता है, तो आपका नेहा जी इस फील्ड में ऐसे लाइक यू नो कैसे, इज इट समथिंग फैमिली जनरेशन से चलते आ रहा है?
1: जी, मेरे डैड जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रिटायर्ड हैं इंडिया में, एम्स में, तो ही हैज़ हिज लाइक इनका शुरू से ही एक पर्टिकुलर रूटीन रहा है, 3:30 सुबह उठ जाना.
0: तो 3:30 सुबह,
1: इवन हियर इन न्यूजीलैंड
0: क्या बात है.
1: सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज मेडिटेशन. सो उन्हीं को देखकर इस चीज़ को हमारे अंदर भी बिल्ट हुआ. तो और इट्स ज्ञान में जब आपको एक्सपेरिमेंट लाइक जब आप कुछ करते हैं और आपको एक्सपीरियंस होने लगता है तो यू विल गेट फॉरवर्ड टू इट ना. तो इसमें बहुत चीज़ है जो कि डीपली आपको नॉलेज होएगी इस इवेंट में. इवन फॉर बच्चों को बिजी करने के लिए थोड़ा सा ड्राइंग का भी बच्चों का रखा हुआ है. तो इट विल बी अ गुड इवेंट टू कम ओवर, लर्न द मेडिटेशन. यस,
2: बेसिकली आप खुद को जान सकते हैं.
1: जी जी.
2: और जैसे अंकल जी का शेड्यूल 3 बजे उठ के इतना डेडिकेशन के साथ, मैं ये कहना चाहूँगी मेरे नाना जी जो थे
1: जी.
2: बिल्कुल आपके जैसे दिखते थे. एंड आई रियली, मैंने जब भी अंकल को देखा मुझे मेरे नाना याद आ गए. और वो भी एक योगा टीचर थे और काफ़ी अच्छा योगा सबको सिखाते थे. दिल्ली भी जाके आए हैं वो. और ये शेड्यूल उनका भी वही शेड्यूल था, तो आई कैन वेरी मच रिजेंबल. एंड यही है योगा का एंड मेडिटेशन का, कि आप खुद को जान सकते हो, यू गेट टू नो योर सेल्फ क्या चल रहा है. और मेरे जो मदर इन लॉ है वो भी काफ़ी मेडिटेशन करते हैं. सो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम हर दैट यू कम टू नो योर सेल्फ.
1: डेफिनेटली.
0: और सॉरी नेहा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक हम लोगों के लाइव में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. देयर सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन एंड कि लोगों को साउंड नहीं सुनाई दे रहा है. एंड आई थिंक यहाँ सब तो मेरा नॉर्मली दिख रहा है, पर आई डोंट नो क्या हुआ है. सो गाइज, वट विल डू इज हम इस वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं, बट डोंट गो एनीवेयर, विल कम बैक विद अनदर लाइव ताकि बाकी भी लोग जो है सुन सके. क्योंकि आई थिंक यहाँ पर तो मेरा सब नॉर्मली दिखा रहा है, पर आई डोंट नो क्या हुआ है. नॉर्मली ऐसा होता है व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन साइड टू अनदर. सो वी विल बी बैक सून, डू नॉट गो एनीवेयर. यस, जी हाँ, बिल्कुल. हमारे जब हम 2-3 काम एक साथ में करते हैं तो यही हो जाता है. सो समथिंग हैपन, पर चलो कोई नहीं, वी गोइंग टू अ सॉन्ग. और जैसे ही वापस हम आएंगे, वी विल बी आल्सो गोइंग ऑन आवर फेसबुक लाइव. यू आर लिस्टिंग टू रेडियो केजे लोकल, ओनली ऑन प्लेन्स मीडिया.

0: इस इवेंट का मेन रीजन ये है कि एवरीबॉडी गेट बेनिफिट ऑफ इट, जिससे जिसे हम कहते हैं कि योगा ऑफ माइंड सिखाया जाएगा उसमें. सो कम अलोंग एंड या जस्ट कम विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द मेडिटेशन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ इट.
1: नेहा जी, आप जिस तरह से आप मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, आरजे दिशा, आई थिंक इन दिस डे एंड टाइम वेयर हम इतनी सारी चीज़ों के साथ सराउंडेड है, अपोक स्टडीज, what do you think, how important is meditation for just for everyone, not just for one particular person?
2: क्रिश जी, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो, लाइफ इज़ वेरी वल्नरेबल, और आप कितना सब कुछ एक साथ जब प्रोसेस नहीं कर पाते, मेडिटेशन इज़ द ओनली थिंग दैट हेल्प्स. और मुझे अभी एक ही चीज़ याद है, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ वर्किंग, गिविंग एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस, थीसिस के टाइम, मेरे मदर इन लॉ मुझे एक ही बात बोलते थे, 10 मिनट का वीडियो भेज रही हूँ, जस्ट लिसन टू दैट एंड गो, everything would be fine, and it actually worked. So मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि अगर आप बेसिक भी स्टार्ट कर रहे हो, just start from 10 minutes, 15 minutes, and look the change जो आप में आ रहा है, and that would be very much helpful. Yeah.
1: जी हाँ, और वैसे भी अगर आप शादीशुदा है तो आपको डेफिनेटली मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है. चलो नेहा जी से और बात करते हैं. नेहा जी, आप जैसे हम जब मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप बहुत ही यंग एज से

0: आप मेडिटेशन इस फील्ड में हो चले गए हैं। एक बात मुझे पता है कि जो लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं उनका माइंड बहुत काम रहता है, तो आप गुस्सा करते हो?
1: बहुत कम
0: मुझे मेडिटेशन नहीं लगता, आपको देख के नहीं लगता कि आप गुस्सा करते हैं?
1: जी, ऑल आई गॉट इट फ्रॉम माय डैड, जो कि मैंने, कहते हैं कि घर में ही नींव डाली जाती है तब जाके वो पौधा उभरता है, तो मेरे फादर की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं, और उसी ज्ञान को लेकर जो हमने सीखा, उसी ज्ञान को लेकर आज यहाँ क्राइस्टचर्च में ये इवेंट जो होने जा रहा है, और ही कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट विहंगम योगा ही।
0: हाँ पापा, सॉरी हम आपसे ज़्यादा नहीं बात कर रहे थे, हमें लगा कि शायद आप नए, आप आज पहली बार आए हो, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके पास तो सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपको लगता है कि आपका क्या सजेशन है, आप लोगों को क्या कहने चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है कि ऐसे ऐसे जो कुछ अगर हो यहाँ पर तो उसमें आकर भाग लेना?
2: मेडिटेशन में एकाग्रचित्ता जिसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, तो अगर हम 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं उसके बाद बड़ा प्रॉपरली कोई भी काम कर लेते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं 92 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और सुबह हम ये जो सूर्य है उसका पाठ करते हैं, उसके बाद सिद्धासन में बैठ कर एक घंटा तक बैठ जाते हैं, पता ही नहीं होता हम कहाँ थे, इतनी शांति होती, इतना पीसफुल होता है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग।
3: जैसे अभी बात करके भी हमें कितना अच्छा लग रहा है, वी एक्चुअली फील लाइक हम यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, सिर्फ बात करके ही ऐसा लग रहा है।
2: इसकी दो रानी है, हम गए उनके घर पे एक बजे, रात के एक बज रहे थे, तो जैसे हमने उनको ऐसे आपस में जिक्र कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी करूँगी, तो मेडिटेशन कर। तो इसमें क्या होता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो इसमें क्रियाएँ होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा आदमी होते हैं उसमें तो थोड़ा सी चाला क्या जाती है, ये तो जान के कर रहा है, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं जो तो निष्पाक होते हैं, तो वो देखते हैं, कहते हैं उनमें जब क्रिया होती तब लगता है कि हाँ कोई ना कोई चीज़ इसमें, थोड़ी लिखी हुई और प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, थोड़ी पढ़ के प्रैक्टिकल जब करते हैं तो वो अनुभव में आता है। पहली कोटि में हमें 5 तत्व का दर्शन होते हैं।
0: क्या बात है, और जिस तरह से आपने आज हमें एक्सप्लेन किया, आई थिंक और डेफिनेटली आई थिंक जितने लोग देख रहे हैं, शालिनी जी आप भी हमारे साथ हैं और कुछ लोग और हमारे साथ हैं क्राइस्टचर्च से जुड़ चुके हैं, आप लोगों को डेफिनेटली आकर इसमें भाग लेना चाहिए। और अनिया जी, आई एम अज्यूमिंग कि ये इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ है?
1: जी, इट्स अ फ्री रजिस्ट्रेशन, आपको विहंगम योगा न्यूजीलैंड के वेब पेज पे भी मिल जाएगा, और उसमें आप जस्ट स्कैन करना है आपको कोड जो कि इसमें लिखा हुआ है, जस्ट स्कैन विद योर फोन, और इजीली, इट इज़ इजी टू स्कैन। और मैं यही कहना चाहूँगी, ये जैसे हम श्री भगवद गीता पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक अध्याय में भगवद गीता के लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय ब्रह्म विद्याया श्री कृष्ण अर्जुन वाच। सो ब्रह्म विद्या, व्हाट इज ब्रह्म विद्या, उस ज्ञान को बताने के लिए सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, और इट्स विद द स्पिरिचुअलिटी, इट हैज़ अ बेनिफिट ऑफ मटीरियल लाइफ एज वेल, लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें फुली आपकी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें फुली उसका बेनिफिट पाने के लिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, कम अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स।
0: थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वंस अगेन ऑफ रेडियो के, ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो के जी, इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड आई थिंक ज़रूर लोग जो देख रहे हैं आएंगे। वो एक बार फिर नेहा जी, अगर आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ से कब और टाइमिंग, और फिर जाते जाते पापा आपसे हम कुछ इन वर्ड्स ऑफ एनलाइटमेंट सुनेंगे, तो नेहा जी पहले आपसे शुरू करते हैं, एक बार फिर अगर लोगों को बता सकते हैं ये कब कहाँ से हो रहा है, टाइमिंग।
1: जी, ये विहंगम योग का मेडिटेशन इवेंट 26 सितंबर सैटरडे इवनिंग में 5:30 to 8:30 होएगा, देन महाप्रसाद विल बी गिवन टू एवरीवन, और टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में है जो कि कॉमन है, सारा सारे लोग वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो कम विद योर फ्रेंड्स।
0: पिछली बार हम आपसे वही मिले थे,
1: जी जी,
0: इट्स अ वेरी फेमस होल। और चले पापा आपसे कुछ वर्ड्स ऑफ एनलाइटमेंट, क्योंकि आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देखा है, और कहते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी मज़हब का आप बिलीव करो या कोई भी धर्म का मानो, बड़ों का जो एडवाइस आते हैं, क्योंकि इसमें भी रामायण में भी देख लिए, अगर शायद बड़ों का एडवाइस लेते तो रावण का लंका नहीं जलता। तो चले पापा जी आपसे कुछ सुन लेते हैं।

0: आज से 20 साल पहले की बात है, मैं रियल आपको बताता रहा हूँ। तो हमारा घर गुड़गांव में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव। तो सुबह 3 बजे 3:30 बजे के करीब मैं ध्यान में बैठा होता तो ओम का उच्चारण होने लगा, स्वतः गुंजायमान होने लगा ओम का। तो मैंने सोचा कि ये ओम का उच्चारण मैं सुन रहा हूँ तो शायद कहीं मंदिर है हमारे घर के पास, एक गीता भवन है, काफ़ी अच्छा बड़ा मंदिर है। तो मैं ऊपर छत पे गया, वहाँ जाकर देखा कि नमक मंदिर तो बंद पड़ा है, नहीं कोई आवाज़ है। फिर आया नीचे तो घर में वही ओम का गुंजायमान, मगर मैं अपने आप में रखूँगा तो सब कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। मैंने इन सब बच्चों को उठाया, 20 साल पहले की बात है, इनको अभी ध्यान है, तो इन्होंने सुना सब। लेकिन उसके बाद वो लुप्त हो गई वो विद्या, स्वामी जी ने दिया है दूसरी कोटी में कि ओम का आप साक्षात्कार दर्शन करोगे और ओम का उच्चारण सुनोगे, लेकिन ये गुरु विद्या, गुरुमुखी विद्या है, इसका आप प्रचार अपने मुख से नहीं करोगे। मैंने वो सबको बता दिया, इसके बाद वो 20 साल काफ़ी गैप पड़ गया उसका, और वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, अब नहीं रहा। लेकिन जो हमारे स्वामी जी ने कहा है, डंकी की चोट पर कहा है, कहते मैंने अपने बैलों से खेती खुद जोता है, खुद किया है, उन्होंने कहीं से नहीं लिया, किसी वेद उपनिषद किसी ने दिया, अपना ज्ञान। जैसे जैसे वो ध्यान में बैठे 17 साल की, तो हिमालय में जैसे जैसे ज्ञान आता गया, कभी स्कूल नहीं गए थे, उसको वो लिपिबद्ध करते चले गए, पांडुलिपि रखी हुई उनकी, हाथ की लिखी, हस्त लिखी हुई, और उसके बाद उन्होंने उनके इसका लेखन किया। और फिर उनके जो दूसरे उत्तराधिकारी था, उन्होंने कहा कि आप इस ग्रंथ का भाष्य कर देना, इसका हिंदी में अनुवाद कर देना, अदरवाइज तो जैसे और ग्रंथों का वो हो गया ना, और ग्रंथों का जिस दृश्य ने लोगों ने खींचतान कर उनका अर्थ अर्थ का अनर्थ कर दिया है, इस तरह से स्वर वेद का अर्थ का अनर्थ ना हो। तो स्वामी जी की दूसरी जो प्रथम परम्परा प्रथम परम्परा धर्मचंद जी महाराज थे, उन्होंने 15 साल तक कहा आपके पास 15 साल का टाइम है और 15 साल में इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए। तो ये ग्रंथ घर में आना ही बहुत बड़ी बात है, इसके सिर्फ 5 धोए सुबह से आप, ये तो एक ऐसा मीठा है कि खा के ही अनुभव किया जा सकता है। तो ये स्वामी जी ने कहा है कि सिर्फ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, मैं नहीं कहता तुम, लेकिन जब 10 मिनट अगर ईमानदारी से आप 10 मिनट करते हो तो फिर 1 घंटे और 2 घंटे का पता ही नहीं लगता, जो आनंद उसमें आता है। ये भौतिक आनंद तो कुछ भी नहीं, क्षणिक आनंद है, ये तो समुद्र से एक चलू भरा जो आनंद नीचे बिखरा हुआ वो आनंद है, और वो तो अथा आनंद है, परमात्मा का तो बहुत अथा आनंद है।
1: थैंक यू पापा जी, और थैंक यू नेहा जी, हम आप दोनों को आपके इवेंट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहेंगे। सो गाइस, दैट वाज हमारे साथ आज स्टूडियोज में नेहा जी अपने पापा जी के साथ आए थे। एंड दिशा जी, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो भी आज, और बहुत ही अच्छा लगा, कुछ कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जबकि हमारे कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में आज बिजी चल रहा था, तब तक के लिए दिशा जी मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, यू थिंक अबाउट अ सॉन्ग, इससे पहले वी साइन ऑफ। इन द मीन टाइम आई विल गो एंड हमारे जो बाकी स्पॉन्सर्स इनको भी याद कर लेते हैं। तो कुछ और हमारे स्पॉन्सर्स, जैसे पीपी प्रोडक्शन के बारे में आपने सुना, इसके साथ साथ यूनिक इतनी कलेक्शन, आपको भी अगर यूनिक आउटफिट की जरूरत है तो यूनिक इतनी कलेक्शन नाम जरूर याद रखिए। इसके साथ साथ ग्लोबल फ्रेश, जी हाँ, आज हम गए थे ग्लोबल फ्रेश, जहां पर अभी बहुत सारे फीजी से जो फ्रेश वेजेस आए वीकेंड के शॉपिंग के लिए, सो मेक श्योर वीकेंड अपना शॉपिंग है, आप जा सकते हैं। इनके साथ साथ डीजे गेडियन, हाउ आर यू गेडियन, गेडियन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर टीम। और इसके साथ साथ हमारे साथ करण कनेक्ट इलेक्ट्रिकल, कैसे हैं जोन जी? जोन जी अभी रिसेंटली इन्होंने हमारे घर पे बहुत ही अच्छा काम किया, सो इफ यू आल्सो लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिशियन, रिमेंबर द नेम करण कनेक्ट एडिटर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीले धमलिया फ्रॉम SBG अकाउंटिंग। सो दैट्स इट गाइस, जितने लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे है, थैंक यू सो मच आज शामिल होने के लिए, आप लोगों का साथ बहुत ही अच्छा लगा। और आज जैसे हमने कहा कि RJGB के एब्सेंस में वी हैव गॉट अवर न्यूज़ टीम मेंबर RJ दिशा जी, विल लेट यू साइन ऑफ टुडे, इफ यू कैन से गुड बाय टू अवर लिसनर्स ऑन द फ्रीक्वेंसी।
2: To my listeners and followers, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी RJ दिशा, हंसती गाती झूमती नाचती, और आज आपके साथ मुझे रहकर बहुत मजा आया। And just as I say, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है, तो यही आवाज को भूलना मत।